खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में,

0: वार गया परवार हिंद तो वार गया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: महफल दे अगले दौर दे विच साडी शायरा पेश हो रही है जेडी के मोहाली विखे वसदी है। मेरी मुरादे सुरेंद्र कौर पोगल जी, सुरेंद्र कौर पोगल जी साडी काम महफल दे विच पहला भी आउंदे रहिंदे ने, इस बार फिर उन्हां दा निघा स्वागत है। सुरेंद्र कौर पोगल जी, जी आया।

0: वाह जी,
1: गजल तेरी मुझको सुनाने लगे, रोते रोते हम मुस्कुराने लगे। एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, एक लम्हे। शमी भाई जी सुनियो गल।
0: जी
2: जी
1: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, और मनाने में हमको जमाने लगे।
0: क्या बात है,
2: बहुत
1: रोते रोते वो मुस्कुराने लगे। आगे कहना, रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, रात में हमको सोने की। आगे ना, रात से सानू सोने की फुर्सत कितने है।
0: जी
1: रात में
2: जी

0: क्या बात है।
1: रोते हम मुस्कुराने लगे।
0: बात ही
1: अगे कहना जी वो काल काल दी जिंदगी बारे पूछता भी कल नू की होएगा।
0: जी
1: उसे कहना

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना सिरे उत्ते वजना कड़े है जड़ा उन्हें एक दिन पजना एक दिन पजना एक

उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल चले हैं।

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लदी धरती ये भंवरे गुन।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास करो।

के सुटते प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए जदों।

ओ लेखा लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ताही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए, शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना, तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए।

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ। नी मंजूर मैनू हारा, मैं तेथों

मंजिल सारी कर लेनी एक दिन आपां दोवां। मैं तेरे हासे आच हसां, तेरे रोने आच रोवां। नी तू ऐसी मन लगी, दिल ना वज गई ठगी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया रा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

मैनू जानी ना तिला बौकर बन के हूं जदेऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पखियां दी झल नहीं

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात ले